हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत पहले आप सुनेंगे ज्ञान ज्योति।

ज्ञान ज्योति। आध्यात्मिकता का संबंध बाहरी जगत से नहीं, यह उस जगत से संबंधित है जो आप अपने अंदर बनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञान ज्योति। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ।

जिसके पास भगवान का साथ है उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।

हर सुबह ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें नया जीवन प्रदान करते हैं।

जिस दिन दिल से भगवान को याद कर लिया, उसी दिन सच्ची शांति मिल जाएगी।

भक्ति संगीत को इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे हरिहरन और साथी। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में और उसके पश्चात हिंदी में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05 पर। लोक संसार कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 7:35 पर। आठ बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचल डायरी का आज का अंक लेकर हम हाजिर होंगे 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। नौ बजकर 20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 9:28 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। 10:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति के फिल्म गीत और 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। 11 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बालमंडल और 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दो बजकर 30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। युवमंच कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 पर। छह बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गल तुसांदी। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडिया दीतान। सात बजकर 45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे दिला दे मीत पहाड़ी लोकगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके पश्चात हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं सम्बोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीयमध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ लखनौनगरे इकाना क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस् अय्यरेण अर्जितानाम् 1100 धावनाङ्कानां बलेन पञ्जाब किङ्ग्स् दलेन लखनौ सुपर जायण्ट्स् दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स् दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स् दिल्ली कैपिटल्स् दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनके अपने इस खास कार्यक्रम में। जी, रविवार की ये सुबह और बिल्कुल नई उमंग, नई तरंग, नई उम्मीदों की ये सुबह। कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। जी दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हर दिन एक विचार के साथ, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जीवन को संवारते हैं। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुश रहें, गुनगुनाएं

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। दोस्तों, आज है 24 मई सन 2026 और आज के दिन जो भी घटनाएं घटी थी यानी 24 मई को, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो 24 मई को 1883 में अमेरिका में ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था और इसके निर्माण में लगभग 14 वर्ष का समय लगा था। 1915 में आज के दिन ही महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। चौबीस मई सन 1923 में आयरिश नागरिक युद्ध की समाप्ति हुई थी। आज के दिन ही 1959 में साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया था। चौबीस मई 1789 में अमेरिकी संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था। 1819 में महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इसके साथ ही आज के दिन ही 1955 में राजेश रोशन का जन्म हुआ था। चौबीस मई सन 2000 में भारतीय उर्दू कवि मजरू सुल्तानपुरी का निधन हुआ था। सन 2014 में आज के दिन ही भारतीय लेखिका लक्ष्मी कुमारी चोड़ावत का निधन हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के दिन की इतिहास की घटनाएं और एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं संगीत की दुनिया में।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन खबरों का। इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि 6 से 7 फीट का शिवलिंग अपना आकार ले चुका है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा आगामी 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को देश की असली ताकत बताते हुए कहा कि युवा विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत के युवाओं और भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर दुनिया बेहद उत्साहित है, इसलिए भारत की विकास यात्रा में उसको हिस्सा बनना चाहिए और भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भागीदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले और उनका समर्थन जो है वो खिल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए डिजिटल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मौके पर संबोधित करते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के हजारों युवाओं के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब स्मार्ट फेंसिंग की मदद से अभिज्ञ बनेंगी सीमाएं, और ये स्मार्ट फेंसिंग मजबूत सुरक्षा ग्रिड योजना का हिस्सा होंगी जिसे आगामी एक साल में लागू कर दिया जाएगा। परियोजना के तहत जो उपकरण लगाए गए हैं उनमें एंटी ड्रोन, गश्ती वाहन, रडार लॉग और भी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ जो है वो इनको बनाया जाएगा, और ये जो सीमाएं हैं वो अभिज्ञ होंगी और इस पर लगभग 10 क्वच होंगे, और इनके माध्यम से जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा दुश्मन को हमारे देश में घुसना। ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अंतिम समय की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी और अधिकारियों की छुट्टियों और निजी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद पेंटागन और व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो गई है, और अमेरिका में कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले आसन हमले को टाल दिया था, लेकिन अब बातचीत के गतिरोध के चलते अमेरिका फिर से विनाशकारी हमले की तैयारी कर रहा है। राजौरी में दिखे 3 संदिग्ध आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर चलाए गए व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, और यह जानकारी जो है वो अधिकारियों ने दी है, और 3 आतंकवादियों की गतिविधियों पर संदेह था। और व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा कि आज पूर्वाहन लगभग 11:30 बजे पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के बीच में जो है उन्होंने मिलकर खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त अभियान के दौरान राजौरी के गंभीर मुगलन इलाके में आतंकवादियों के साथ आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा कि सैनिक ने त्वरित कार्रवाई करके जवाब दे दिया है, और इसमें कहा गया कि मुठभेड़ शुरू हो गई और घेराबंदी भी कर ली गई है। ऑपरेशन शेरूवाली जारी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में कम से कम समय

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य

0: इस नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि कुल्लू के बारे में। तो देव संस्कृति और ग्रामीण जीवन के बारे में आपको बता दिया, बात कर लेते हैं पारंपरिक पोशाक और जीवन शैली के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पट्टू यानी भेड़ की ऊन का बना हुआ एक पट्टू पहनती हैं और सिर पर रंगीन थिप्पू या स्कार्फ बांधती हैं। पुरुषों की परंपरागत टोपी जिसे कुल्लवी टोपी कहा जाता है और जो कि यहाँ की खास पहचान है। जीवन शैली कृषि और पशुपालन पर आधारित है, लेकिन अब टूरिज्म भी धीरे धीरे इस जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। जीवन यापन के लिए अब यहाँ के लोग बाहर भी जाने लगे हैं, दूसरे राज्यों में भी नौकरी करने लगे हैं। और दोस्तों, अगर कुल्लू के खान पान की बात करें तो यहाँ का खाना भी स्थानीय परंपराओं का प्रतिबिंब है। प्रमुख व्यंजन है सिड्डू, चिलड़े गिच्चे, भल्ले और इसके साथ साथ ही बेडुई रोटी। खास अवसरों पर धाम बनाई जाती है और यह एक पारंपरिक पहाड़ी थाली होती है जिसमें कई पकवान होते हैं और इसे पत्तों की प्लेटों पर परोसा जाता है। और समय के साथ बदलाव के चलते अब जो है वो थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो कुल्लू की संस्कृति है, कुल्लू का पहनावा है, ये बहुत ही समृद्ध है और इस तरह से पूरा हिमाचल प्रदेश अद्भुत है। और बिल्कुल जी, हमें हिमाचली होने पर गर्व है, हमें हिमाचली होने पर जो है वो गर्व होना भी चाहिए। फिलहाल एक बार फिर वक्त हो चला है एक लोकगीत का।

लोक संसार कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। दोस्तों बात कर लेते हैं कुल्लू के लोक नृत्य संगीत और मेले की। कुल्लू के लोक नृत्य जैसे नाटी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिकता एकता का प्रतीक है। हारमोनियम ढोलक नरसिंगा और रणसिंगा जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर सजे यह नृत्य मेलों त्योहारों और विवाह जैसे अवसरों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। कुल्लू दशहरा सबसे प्रमुख मेला है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और बिल्कुल जी, कुल्लू जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी जगह है और आप भी यहाँ पर जा सकते हैं, निहार सकते हैं और आधुनिकता और परंपरा का संतुलन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं आज भी अपनी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो देवताओं का विश्वास, देव रीति का पालन, सामुदायिक एकता अभी भी गाँव की आत्मा है। और ये सब कुछ सिर्फ आपको देखने को मिल सकता है कुल्लू में और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर अभी भी देवताओं पर विश्वास किया जाता है, देव संस्कृति पर लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। इसके साथ साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गाँव के लोग हैं उनमें एक आपस में बहुत ही अच्छा, आप कह लीजिए भाईचारा है, सामुदायिक एकता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और धीरे धीरे जो है वो कुल्लू का विकास और अधिक हो रहा है।

कुल्लू की जो अपनी संस्कृति है, कुल्लू की जो अपनी पहचान है, वो बिल्कुल उसके वाद्य यंत्रों के माध्यम से दिखती है। उनकी धुनों पर जब वो लोग नाचते हैं, नाटी करते हैं, तो अद्भुत वो नज़ारा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि कुल्लू की जो पोशाक है, उनकी जो जीवन शैली है, वो भी बहुत ही अच्छी है, और उनकी वो पहचान है, और उस पहचान के ज़रिए कुल्लू ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में।

तो बिल्कुल दोस्तों, कुल्लू का जो लोक जीवन है वो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की जो प्रकृति है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी कुल्लू की घाटी में जो है वो प्राकृतिक सुंदरता को ही नहीं देखते, लेकिन इसके साथ साथ ही वहाँ की समृद्ध संस्कृति को भी निहारते हैं। और ये सचमुच ही बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अद्भुत है, गजब है। और अगर आपको भी मौका मिले तो आपको भी जाना चाहिए। आप हिमाचल के हों, आप भारत के हों, आप विश्व के हों, आप कहीं के भी हों, एक बार आपको हिमाचल प्रदेश की गोद में बसी कुल्लू घाटी को जरूर निहारना चाहिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है लोकगीत का।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का लोक संसार कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण

0: साझा किया। उन्होंने भारत को अमेरिका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली टुडे। आयुष्मान भारत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम जुलाई, स्वस्थ साथी बेनिफिशियरीज टू बी इंक्लूडेड। महाराष्ट्र एसआईटी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 4 अक्यूज्ड इन नाशिक टीसीएस सेक्सुअल असॉल्ट एंड रिलीजियस कन्वर्जन केस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ईरान डील इंक्लूडिंग रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लार्जली नेगोशिएटेड। IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
9: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
8: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation

पानी का दुरुपयोग किया तो काटा जाएगा कनेक्शन। बड़सर क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट गहराने लगा और लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग लगातार पेयजल स्रोतों और आपूर्ति व्यवस्था पर नजर बनाए रखे हुए है और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई भी कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने नानवा गांव में कार्रवाई की है और जानकारी के अनुसार कुछ लोग पेयजल आपूर्ति से जुड़े पानी का उपयोग अपनी क्यारियों और अन्य सिंचाई कार्यों में कर रहे थे और जिससे पानी का अनावश्यक उपयोग हो रहा था और इसका असर अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंच रही जलपूर्ति पर पड़ रहा था। तो इसके लिए जो है वो अगर अब पानी का दुरुपयोग किया गया तो कनेक्शन भी काटा जा सकता है। हिमाचल के स्कूलों में अब बच्चे सीखेंगे AI। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब कक्षा छठी से लेकर बारहवीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए स्किल विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बच्चों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए दुनिया की जानी मानी कंपनी से हाथ मिलाया है जो कि इस कोर्स को तैयार करने में मदद करेगी। शिक्षा बोर्ड कि नए बच्चों की उम्र के हिसाब से AI का नया सिलेबस तैयार किया गया है और इस कोर्स का मुख्य मकसद बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना, कंप्यूटर की समझ, कुछ नया बनाने की कला सिखाना और किसी भी समस्या को आसानी से सुलझाने का हुनर सिखाना है। इन खबरों के साथ आज का हिमाचल डायरी का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

भारति से आप चित्रलोक सुन रहे हैं। आज जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है और हम उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां।

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरे वे पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। IGMC शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि IGMC में सिर्फ 30,000 रुपये में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। IGMC के सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्तस्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। IGMC में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि IGMC में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
4: एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर रशपाल है, जो हमारे ऑनकोस सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फाहिम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं, उसको लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद ज्ञात होगा, कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेफ्ट के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा और पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेफ्ट का रास्ता उसको जोड़ पाए।
3: कुल्लू जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायतीराज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
5: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
3: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर व स्पीति क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी किन्नौर व स्पीति क्षेत्र एकांकियों द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत चुनावों के मद्देनजर संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
6: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चरण के मतदान के लिए 24 मई शाम 3 बजे से 26 मई तक, दूसरे चरण के लिए 26 मई 3 बजे से 28 मई तक तथा तीसरे चरण के लिए 28 मई शाम 3 बजे से 30 मई तक संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति मतगणना दिवस 31 मई को भी चयनित क्षेत्रों में सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 तथा आबकारी नीति 2026-27 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
3: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सॉफ्टवेयर हैं, जबकि अवसंरचना और अन्य सुविधाएं राष्ट्र के हार्डवेयर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवा चिकित्सकों की विशेषज्ञता, नवाचार और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के बारे में श्री नड्डा ने कहा कि संस्थान ने एक मजबूत ब्रांड बनाया है। ये स्वास्थ्य सेवा में पेशेवर दक्षता, समझ और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि रोगियों की देखभाल को मजबूत करने के लिए 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। समारोह में 26,396 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधियां तथा फेलोशिप प्रदान की गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, आचार संहिता में कैबिनेट बुलाकर क्यों लिए फैसले, चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक जागरण के शब्द हैं, चुनाव आयोग का मुख्य सचिव को नोटिस, मंत्रिमंडल बैठक हुई तो क्या निर्णय लिए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की पहली सफल सर्जरी, IGMC शिमला ने रचा इतिहास। दिव्य हिमाचल की खबर है, हिमाचल की बेटी ने फतह किया एवरेस्ट, करसोग की रुचिका ठाकुर ने ITBP के महिला अभियान दल संग लहराया तिरंगा। हिमाचल दस्तक लिखता है, आज 3 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, मौसम के रंग सुबह धूप, शाम को बारिश, ओलों और बर्फबारी से 5 डिग्री तक गिरा पारा। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, आज से साफ रहेगा मौसम, 28 को करवट बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। आईजीएमसी शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अंदाज फिल्म के इस गीत के साथ।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम अमर प्रेम।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मनाडे और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: बताएं आपसे थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: से ही उनकी आज दुआएं ले ले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण

0: लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। दोस्तों, रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कृति, संगीत और समाज को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल रहा है। और रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी और उसके बाद इसका नाम पड़ा था आकाशवाणी। गांव की चौपाल हो या शहर की सुबह, रेडियो हर दिल की धड़कन बना। कभी समाचारों ने लोगों को जोड़ा तो कभी गीतों ने मन को सुकून दिया। आवाज जो दिल से निकले वही आकाशवाणी बन गई। साथी हाथ बढ़ाना, ये देश है वीर जवानों का। इस तरह के तराने, देशभक्ति के गीत और सैनिकों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, जो कि जिन गीतों ने देश का हौसला बढ़ाया। एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जब पूरा परिवार रेडियो के आसपास बैठकर कार्यक्रम सुनता था। बिना का गीतमाला, समाचार, हवा महल और जयमाला जैसे कार्यक्रम गीतों के जीवन का हिस्सा बन गए थे।

और बिल्कुल दोस्तों, सैनिक भाइयों के लिए प्रसारित होने वाला जयमाला कार्यक्रम आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा है, बल्कि शिक्षा का भी मजबूत माध्यम बन गया है। जब गांव में इंटरनेट और टीवी नहीं थे, तब रेडियो ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत था। छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान, विज्ञान, भाषा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे रेडियो के माध्यम से। कई लोगों ने रेडियो सुनकर अपनी पढ़ाई और करियर को नई दिशा दी। आज भी आकाशवाणी शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और समाचार से जुड़े उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित करता रहता है।

महिला सशक्तिकरण की बात करें तो समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने में भी रेडियो का विशेष योगदान रहा है। महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और अधिकारों से जुड़े कार्यक्रमों ने लाखों महिलाओं को जागरूक किया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में रेडियो ने प्रेरणादायक भूमिका निभाई और ना जाने कितनी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की एक नई राह बन के आया।

रेडियो रेडियो के माध्यम से महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए गए और समय समय पर नए नए महिलाओं से जुड़े हुए प्रोग्राम रेडियो लेके आए, आकाशवाणी लेके आई, और इन प्रोग्रामों के माध्यम से महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया और महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई नींव स्थापित की। और बिल्कुल दोस्तों, रेडियो के माध्यम से जब जानकारी घर तक पहुंचती है तभी बदलाव समाज तक पहुंचता है, और रेडियो आपका हमेशा एक सच्चा हितैषी रहा है। रेडियो ने कभी भी आपका समय व्यर्थ नहीं किया। रेडियो के माध्यम से आपको सूचनाएं मिली, समाचार मिले, जानकारियां मिली, मनोरंजन मिला, सब कुछ रेडियो के माध्यम से। रेडियो ने आपको कभी पकड़ा नहीं, कभी रोका नहीं, और रेडियो बिल्कुल अभी भी आपके लिए, हमेशा आपके मनोरंजन के लिए आपके साथ खड़ा है।

कृषि क्षेत्र में बात करें तो किसान जगत के लिए भी रेडियो ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। देश का किसान हमारी ताकत है और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने में रेडियो हमेशा आगे रहा। मौसम की जानकारी, नई खेती तकनीक, डेयरी फार्मिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक रेडियो के माध्यम से पहुंचती रही है। और आपको बता दें कि आज भी कई किसान सुबह खेतों में काम करते हुए रेडियो सुनना पसंद करते हैं। और बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी गृहिणियां हैं जो कि अपने रसोई घर में अभी भी रेडियो लगा के सुनती हैं, चाहे रेहड़ी फड़ी वाले लोग हों जो कि सब्जी बेचते हों, दुकानदार हो, चाय की नुक्कड़ पर बैठा हुआ एक आम इंसान हो, या आप कह लीजिए कि हर जगह हर घर में रेडियो का एक अपना खास महत्व है, जो कि इतनी बड़ी आप कह लीजिए कि एक इंटरनेट क्रांति आने के उपरांत भी आज भी रेडियो ने अपनी जगह आप सबके दिलों में बनाई हुई है। और ये सब हो सका है आपके स्नेह और आपके प्रेम से। बिल्कुल दोस्तों, समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। पहले रेडियो सेट बड़े हुआ करते थे, फिर ट्रांजिस्टर आए और अब मोबाइल फोन पर भी रेडियो सुना जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिनके माध्यम से आप जो हैं वो रेडियो अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं, बिल्कुल साफ स्पष्ट। और बिल्कुल जी हाँ, हमारा भी आप ये जो प्रोग्राम है इस वक्त आप सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। FM चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रेडियो को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। और बिल्कुल जो नई पीढ़ी है वो भी बहुत पसंद करती है रेडियो, चाहे विशेष रूप से अपनी गाड़ी में नई पीढ़ी रेडियो सुनती हो या फिर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रेडियो सुनती हो, क्योंकि युवाओं के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से युवाओं को प्रेरित करता रहा है रेडियो। चाहे बात यो मंच की हो, युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे करियर संबंधित प्रोग्राम जो हैं वो रेडियो के माध्यम से युवाओं के लिए लेकर आता है रेडियो। तो दोस्तों, ये 90 वर्षों का जो सफर है ये बिल्कुल आपके साथ यूं ही अभी भी जारी है। और ये 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग, इसमें हमने आपको बता दिया आकाशवाणी का और आपका और हमारा जो ये साथ है ये यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही वर्षों वर्षों तक आगे यूं ही चलता रहेगा। और रेडियो ने हमेशा आपका साथ दिया है और आप सबका स्नेह, आप सबका अब प्यार जो है वो रेडियो के साथ यूं ही बरकरार रहे। फिलहाल कार्यक्रम का समय हो रहा है यहीं पे पूरा। दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देश प्रेम के फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस गीत के साथ।

आज खिन्न दुखियारी क्यों है माँ, आज यूं हारी हारी क्यों है माँ, तेरे आंसुओं के खारेपन में ये कड़वाहट कैसे आई। शायद हम ही हैं जिसने तेरी ऐसी हालत बनाई है।

देश प्रेम के फिल्म गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फरिश्ते फिल्म से आवाजें आशा भोंसले और साथियों की हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ देश प्रेम के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर सुबह के

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले यहाँ दे सारे श्रोतियाँ जो राम राम जी और कन्या है उम्मीद करा दे तुहे बिल्कुल ठीक होंगे। कन्या दिखा जी आ मौसम बदला दा काली गर्मी हो या आदि काली थोड़ी ये ठंड हो या आदि तो अपने आप पर जो तो हम बचाई नहीं रखना थोड़ा कन्या बिल्कुल जेड़ा गर्मी का मौसम है दिखा सह भी होना बड़ पर जरूरी आ क्योंकि अगर अह सोच गए कि बिल्कुल ठंड ही रहे तो अहाँ दे जेड़ा शरीर है इसको गर्मी भी चाहिए होंगी कि जेड़ा हाँ का पर्यावरण है जेड़ा हाँ का इनवायरमेंट है जो भी जी आ सह गर्मी चाहिए होंगी तो यह परमात्मा एक संतुलन बनाया गर्मी सर्दी है ना जी कने और भी जड़ी बाकी ऋतु है ना सारी परमात्मा बनाई हो तो अहाँ जो जे आ सह बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहता कि हाँ भाई गर्मी बड़ी भरी होगी या फिर सर्दी बड़ी भरी होगी हरेक हिसाबें जी ऋतु के हिसाबें अपना शरीर अहाँ जो टालना चाहिए कने फिर ही अहे जी आ सह अपने संस्कृतियों ने जुड़ना हाँ जो बड़ा जरूरी है अपनी जी अहाँ की धरती माता तीन ने जुड़ना बड़ा जरूरी आ बिल्कुल ये सारी गल्लां हां तुहां ने करनी फिलहाल तुहां जो सुनाई दे ये लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र से तुहे सुना दे इस वक्त कार्यक्रम लोक रंग कने। बिल्कुल जी, यहाँ दी लोक संस्कृति, यहाँ दे लोक गीत, यहाँ दी अपनी पहचान है हिमाचली दी, तहाँ सारे जो यहाँ पर गर्व होना चाहिए कने। यहाँ जो जी अस है अपने बच्चे जो भी ये सारी चीज़ा सिखाना चाहिए कि नहीं, यहाँ जो अपनी भाषा ने, अपनी लोक संस्कृतियाँ ने, यहाँ दे पहनावे ने प्यार करना चाहिए, दे यानी भी यहाँ दिखो दिखिया चलन कने। बाकी जेड़ा से अपनी सारी चीज़ा छड़ी लेनी तो दे यानी करना, सारी चीज़ा अपनाई ने रखा कने। बिल्कुल जी, समय दिखा केड़ा भी आई सकदा, समय केड़ा भी पई सकदा, तो अहाँ जो हमेशा जे अस है तैयार रहना चाहिए दे यानी कि हूँ छड़ीतिया सब कुछ कमाना छड़ीतिया है ना जी, या डंगर रखना छड़ीते, पशुपालन छड़ीतिया, कृषि छड़ीती, तो ये सारिया चीज़ा जी ऐसा प्रकृति बैलेंस कराई जी है ना जी। तो फिर दिखा अहाँ जो जी अस है नहीं छड़ना चाहिए चीज़ा, अपने मूल जड़ा ने जे अस है जुड़े रहना चाहिए कने। आदमी सही या है जमीना ने जुड़ी ने चलता कने, सारे ने मिली ने कने आपसी भाईचारे ने रहा सही, आदमी जी अस तरक्की भी करता कने अगे भी बढ़ता कने। अहे तो तुम जो ये बोला दे कि अहाँ जो जी आ से अपने हिमाचली दी संस्कृतियाँ ने प्यार करना चाहिए, जितनी भी अहाँ दी लोक भाषा न, चाहे कुतु दी भी है, दे नहीं सोचना कि हाँ यह हमीरपुरी है, कांगड़ी है, मंडियाली है, बिलासपुरी है, कलूरी है, दे नहीं सोचना चाहिए, जेड़ी भी अहाँ दी अपनी अपनी भाषा है से अहाँ जो सजाई ने रखना चाहिए कने। बिल्कुल अहाँ जो बोलने च शर्म नहीं आना चाहिए कने, खासकर जेड़े अहाँ दे न्याणे है तिना जो, तो मैं दे बोलना चाहता कि पहले सबसे पहले तिना जो अपनी भाषा सिखाई दिया, क्योंकि अगर से अपनी भाषा सीखी लेंगे, अपनी पहाड़ी सीखी लेंगे, तो बाकी दिन सारी भाषा सीखी जानी, क्योंकि जेड़ी अहाँ दी जे बोलते ना कि अहाँ दे जड़ होंगी, मूल भाषा होंगी ना जी, बेसिक जे है अहाँ जे आहे सुने आदि अपने दादे ते, दादिये ते, नाना नानिये ते, मम्मी पापे ते, सब चीज़ा अगर अहे सीखी जान तो बाकी अहे बाकी सारी चीज़ा सीखी जान देती हैं। जे बोलते ना कि हाँ तू अगर ड्राइविंग करना चाहते तो वहाँ जो साइकिल आना चाहिए, तो इं अगर तुम सारी भाषा सीखना चाहते तो वहाँ जो पहाड़ी भी आना चाहिए, खासकर जेडे अगर तुहे पहाड़ी है ना हिमाचली है, तो ये सारी चीज़ा तुहां जो आना चाहिए, चाहे कोई किसी का भी है, बस अहाँ का बोलने का भावार्थ यही है कि अपनी चीज़ा जो मता भूल दे यानी हो कि ये चीज़ा एकदम लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए कने, बाद च फिर यह सोचते रहन कि नहीं काश उस वक्त जे अस यह बोलते, फिर तुहां जो कोई नहीं मिलना बोलने वाला, ना ही सुनने वाला, ये भी इस हिसाब जी अह टाइम आई सकता, तो तुहां दिया टाइम मता लियांदे, तुहें सारे अपने आपे च, अपने ग्राएं च, अपने बच्चों ने कोशिश करा अपनी भाषा च गलाने दी, क्योंकि जड़ा आनंद जड़ा मजा जी है तुहां जो अपनी भाषा च गलाने आंदा, सह तुहां जो बनावटी भाषा च गलाने दा नहीं आई सकता। फिलहाल एक और लोक गीत तुहां दी रेडियो सेट्टा पर भेजा दे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते तुहे इस वक्त सुना दे है लोग रंग कार्यक्रम कने बिल्कुल श्रोत्यो दिखा होन जी आ से ए यही तुहां जो गलाई सकदे चलदे चलदे कार्यक्रम च कि हमेशा जी आ से अपना व्यवहार सारे प्रति इको जी रखना, किसी ने देन सुटना कि कोई अमीर है कोई गरीब है कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारे ने इको जी रहने की कोशिश करनी, कने कार्यक्रम का समय भी हुण इत्थे उहदा पूरा ता दे अनुमति तुहां सारे जो बोलदे राम राम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को है, आपसे थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कुल्लू जिला में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायती राज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आईजीएमसी शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि आईजीएमसी में सिर्फ 30,000 रुपए में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्तस्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आईजीएमसी में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
2: आंत का कैंसर था, ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5-2 महीने पहले आया था। कुछ एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर यशपाल है जो हमारे ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फहीम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं उसको, लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद ज्ञात होगा कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेटरिन के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेटरिन का रास्ता उसको जोड़ पाए।
0: धर्मशाला में आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई। कार्यक्रम में 100 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। साइकिल रैली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके अलावा योग और स्कीपिंग रोप जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए फिटनेस, अनुशासन और मेहनत का संदेश दिया। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों और प्रशिक्षकों से संवाद करने तथा अपने खेल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर भी मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11:06 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: बेटी, ऐसा नहीं होगा। देख, तू बहू है, बहू की तरह रह, समझी?
5: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने।
6: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
4: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
5: तुम लोग उसे तो बस बहस करवा लो।
6: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी, प्रैक्टिस करते हैं ना।
5: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
6: अरे पिताजी, वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए, आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
5: ट्रेन ट्रेन
7: ट्रेन
5: ट्रेन
7: ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
6: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आपके अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
5: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
6: पिताजी वो हेलो फरमाइश
5: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
4: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
5: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
7: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
5: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा। स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ। एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंग टोन बजती है।
4: सुनो जी,
5: हेलो,
4: सुनो जी, चुप रहो, बकवास बंद करो। ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने। सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
5: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
4: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
6: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
5: शट अप
4: शट अप। बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या? हैं? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
6: देवा देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे। अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
4: नमस्ते नमस्ते, हॅलो फरमाइश। अरे सुनिए, हॅलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझी आप? आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
6: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
4: जलगांव से, पानी गांव से।
6: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
4: क्या
6: मैं कितनी बार फोन करता है?
4: अरे
6: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
4: क्या?
6: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू।
4: अरे
6: अरे, यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
4: ये अनुवाद भी कर रही है।
6: अरे तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायला आवडत का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
4: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
6: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
4: वो क्या है ना,
6: बहाने बनाओ उनका।
4: क्या है ना,
6: यानी कि बहाने मत बनाओ।
4: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
6: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
4: फिर मराठी?
6: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
4: अरे अनुवाद भी कर दिया।
6: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
4: अरे
6: मृणमयी, मई जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
4: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
6: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
4: बाप रे,
6: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
4: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
6: आता तुम ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
4: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
6: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
4: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
6: बहुत बकवास
4: है,
6: एकदम एकदम बकवास जा रहा
4: है।
6: एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है। यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
4: अरे
6: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जी मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
6: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
4: जी मैं हूँ समता सिंह।
6: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
4: क्या?
6: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
4: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसी मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
6: अरे अरे, गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
4: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
6: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो, अपने बॉस का नंबर दो।
4: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
6: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
4: ओ अरे अरे वो सब छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
8: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
4: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
9: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
4: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
9: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ,
4: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है? जी,
9: मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
4: अच्छा,
9: करवालो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाम।
4: है? फिर जनाम हदे जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
9: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
4: हाँ
9: सुनवाओ।
4: हाँ,
9: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सीला दिया। अच्छा लगा?
4: हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
9: हाजी हाजी, ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
4: हाँ,
9: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ ही याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है।
4: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन,
9: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
4: सुनिए तो
9: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: प्यार
1: काट दिया इसका फोन, जिसे मैं प्यार करता था। गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं, ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
1: अरे फिर बजने लगी घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ एक कॉल, फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
3: बोल नहीं रहे हैं, बोल रही हूँ।
1: अरे बाप रे। जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
3: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
1: हाँ
3: हेलो फरमाइश। गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
1: बात? हाँ।

0: कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
1: मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ, मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है, सास की शिकायत?
1: हाँ,
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
1: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कहिए अपने दिल की बात
0: है,
1: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है खड़ूस कहीं की।
0: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
1: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
1: तो सच किसे पता होगा?
0: आपको।
1: तो कौन बोलेगा
0: आप?
1: और सुनेगा कौन?
0: आप मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
1: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: हाँ से आ गई है कॉलर। हाँ
1: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ,
1: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
1: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ,
1: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ,
1: वो मुझे सताती है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
1: चुप चुप, बोलो हाँ, वरना।
0: हाँ भाई, हाँ,
1: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
0: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना, हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
1: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
0: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
1: देखो, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
0: हाँ,
1: तो आप सारे काम सास से करवाने चाहिए।
0: हाँ हाँ,
1: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
0: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
1: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
0: अरे हाँ,
1: और हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
0: हाँ,
1: बोलो हाँ।
0: नहीं पर हाँ,
1: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
0: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई रे बाबा। हाँ,
1: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
0: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
1: हेलो,
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काटने देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है, मर करम जली नास पीटी। मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूँ कि नहीं लूँ, हम लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
0: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
1: हाँ, समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें, बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
0: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ, आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो छुपाओ।
0: अरे ये क्या कर डाला करम जली नाथ पीटी, ये क्या क्या मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
1: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
0: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
1: हेलो फरमाइश का सपना?
0: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
2: सौ सौ साल पगलाओ
1: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
1: सासू जी।
2: सौ सौ साल पगलाओ
1: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
1: सासू जी।
0: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
3: हेलो
4: हेलो
3: फरमाइश।
4: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इसके इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
4: जी हाँ।
5: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
4: और इसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाकिनी जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
5: बिल्कुल
4: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
5: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाए भी करते थे।
4: चलिए इसका मजा लेते हैं।

जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप पहली बार देखी अशोक कुमार को गद्दार के रोल में। आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप। ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहाँ तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहाँ क्या था कि अपने यहाँ तो दो थी, अपने यहाँ दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहाँ कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन हैं एक बंद पड़ी है, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाए तो बाई ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाई ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में एक धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो ओ

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अंबे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाएं तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उससे कहा जाता कि भाई यार 10 सीगम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सीगम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था, और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। ये बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते थे, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आह निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी, और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के 2 मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता।
और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम एन प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, ए चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थी। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर माँ की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे, ए लेके जा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर

आती। अबे रील ही ऐसी आई ये साले, हाँ मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे, मतलब पहला दिन और पहला शो, इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माएं ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहनशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना, आरती भी नहीं उतार पाती थी। और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था, जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले ले। बाकी बालकनी वालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान ना होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आ आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अच्छा, सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी हैं आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हम एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन 11 लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम 11 लाल है ना, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठहाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आंकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसमें मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की हैं, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती

बड़ी काम आती थी, राजा हुआ करते थे भाई, गेटकीपर। बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हों। पता है कल पहुंचेगा, बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था। बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था। अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे। हाँ चल खिसक खिसक खिसक। अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे। अरे क्या बैठने दे। अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना। अरे जगह का भैया देखो, हम एक उस पर बैठे हैं यार। अरे खिसक खिसक। नहीं खिसकता था तो क्या, गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह। अरे नहीं बनेगी यार भैया। गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे, जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे। मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी। आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे, और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा, या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ याद नहीं आता, कहाँ देखा ये भी याद नहीं। एक दो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू 2 किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर

0: पर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बीहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे, और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां, इन्हीं तरह आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग। अच्छे ट्रेंड सिंगर, म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते, मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना। जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ दे के परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवर लाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है, और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है, जो संभवतः है हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और वीसीडी का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है। हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है, पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां थ्री इडियट्स ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय। सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे। घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद कर लें, चीज़ों को आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: बाबू ने लैला मंजू हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना चार खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को
2: नमस्कार।
4: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बाल मंडल।
5: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। जी बिल्कुल, आज है एतवार, रविवार, और नन्हे मुन्ने बच्चों को इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का बहुत बेसब्री से। और बिल्कुल उनका अपना ये कार्यक्रम है बाल मंडल, और इस कार्यक्रम में हम बच्चों से बहुत कुछ बातें करते हैं, उनको सुनवाते हैं गीत संगीत, साथ में कहानियाँ रहती हैं, कविताएँ रहती हैं, पहेलियाँ रहती हैं, और बच्चे भी बहुत उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं इन कहानियों के लिए, इन कविताओं के लिए। तो बिल्कुल बच्चों, देखिए आज का ये प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और सबसे पहले आपसे हम पूछने वाले हैं पहेलियाँ, क्योंकि आप जो हैं वो पहेलियों के आंसर ढूंढ भी लेते हैं, और कार्यक्रम के अंत में हम उनके आंसर्स बताते भी हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन आंसर्स को ढूंढ लेते हैं, और जो नहीं ढूंढ पाते हैं उनके लिए हम आंसर्स जो हैं यानी उन पहेलियों के जो उत्तर हैं वो बता भी देते हैं। तो बिल्कुल पहली पहेली आपके लिए ये रही कि देखिए, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतर गया तो दूसरे की बारी। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। एक बार फिर से पहेली आपके लिए दोहरा देते हैं। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतर गया तो दूसरे की बारी। जी हाँ, अगली पहेली है बच्चों, वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी घटती नहीं। तो इसका आंसर भी ढूंढिएगा कि ऐसी कौन सी वह चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी घटती नहीं है। और अगली हमारी जो पहेली है बच्चों, वो है ना छोटा ना बड़ा, रोज पहनते सब खड़ा। जी हाँ, ना छोटा ना बड़ा, रोज पहनते सब खड़ा। तो इन पहेलियों के आंसर जो हैं वो आप ढूंढ लीजिएगा, और हमें यकीन है बहुत सारे बच्चों ने इनके जो आंसर्स हैं वो ढूंढ भी लिए होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत आजकल तेज़ तरार हैं, शार्प माइंडेड हैं, और बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बच्चों को देखिए इस तरह की सारे मनोरंजन की चीज़ें जो हैं वो लेकर आते हैं, और बिल्कुल हम बच्चों का इशारा समझ रहे हैं कि मनोरंजन की जब बात होती है तो बच्चों के मन में बच्चों के ही गीत आते हैं, और बच्चों के गीत हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बाल मंडल। तो बच्चों आपके लिए भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल मंडल। बाल मंडल कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं आज के नॉलेज की, यानी आज के ज्ञान की। तो दोस्तों, आज के इस ज्ञान वाले सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जी हाँ, अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में, केव्स के बारे में। और बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या सही से नहीं पढ़ा है, उन्हें हम जानकारी दे देते हैं। तो बच्चों, ये जो गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के छत्रपति शांभाजी नगर औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में 30 तो वही एलोरा पहाड़ी रेंज में 100 गुफाएं खोजी गईं। अजंता एलोरा गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ ने टाइगर का शिकार करते वक्त की थी। एलोरा की 16 नंबर गुफा में कैलासा मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। और इसके साथ साथ ही बच्चों, आपको बता देते हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो लगभग 1400 से लेकर 2200 साल पुरानी हैं, और एलोरा की 34 गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राकृतिक रंगों और वनस्पतियों के उपयोग से चित्रकारी करवाई गई है। 1883 में इन गुफाओं ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

तो बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये जो ज्ञान की बातें हैं वो समझ आ गई होंगी, और साथ ही ज्ञान की बातों में आप बच्चों आपको बता देते हैं कि आपको जो है वो अच्छा लिसनर भी बनना है। देखिए, आप अच्छे वक्ता

तभी बन पाएंगे जब आप अच्छे श्रोता होंगे। तो ऐसा बनने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सामने वाले की तरफ आपको देखना है, उनकी बातों को बड़े ध्यान से बड़ी गंभीरता के साथ जो है वो सुनने की कोशिश करना है, और बात के बीच में टोकना नहीं है। देखिए, सामने वाले की जब तक बात पूरी ना हो तब तक उसे टोके नहीं, बाद में आप जो हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने से बोल रहा हो और आप एकदम से उसको बार बार टोकते रहें तो ये अच्छे लिसनर की पहचान नहीं है। और बच्चों, उसके साथ साथ ही ध्यान से सुनना और ज़रूर सीखें, क्योंकि हमें जो है वो कानों से नहीं दिमाग से भी हमें सुनना है, समझना है सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए हमें ध्यान से सुनना भी बहुत ही ज़रूरी है, और ध्यान का बहुत ही महत्व है। बच्चों, आप सुनते होंगे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से खाओ, तो जीवन में ध्यान का बहुत ही महत्व है। इसीलिए आपको जो है वो हर काम ध्यान से करना चाहिए। और इसके साथ ही आजकल के बच्चों के लिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप अच्छे लिसनर्स तभी बन सकते हैं जब आप जो हैं वो अपने हाथ में जो ये बुद्धू डिब्बा आप लेके चलते हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें आपको नहीं उलझना है। देखिए, बात करते वक्त मोबाइल आप ना देखें, क्योंकि सामने वाले को इससे बुरा लग सकता है। क्योंकि अगर देखिए सामने से कोई बड़ा व्यक्ति या आपसे आपके माता पिता, आपके गुरुजन बात कर रहे हों, आपको मिल जाएं और आप अगर आप अपने फ़ोन में ही खोए रहें तो ये थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करें तो उनसे रिस्पेक्ट के साथ, उनके साथ नज़रें मिलाने की कोशिश करें, ताकि उनको ये लगे कि आप जो हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं और सच में ही आपको जो है वो बात सुननी चाहिए। और छोटे छोटे जवाब देना सीखिए। हाँ, अच्छा, जैसे छोटे जवाब दें आपकी रुचि के बारे में जो है वो इससे पता चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, धैर्य रखना, यानी पेशेंस होना। आजकल देखा जाता है कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनमें धैर्य थोड़ा कम हो रहा है। उनमें क्या, अधिकतर लोगों में धैर्य कम हो रहा है। कुछ लोग धीरे बोलते हैं, उन्हें आराम से अपनी बात कहने दीजिए। आपको देखिए, अगर आप अच्छे लिसनर बनने चाहते हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखना भी सीखिएगा। क्योंकि अगर आप एकदम से, जैसे आप खुद बहुत स्पीड से बोलते होंगे और आप चाहें कि सामने वाला भी वैसे ही हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बड़े आराम से, इत्मीनान से अपनी बात समझाने की और दूसरे की बात समझने की। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे लिसनर बनते हैं, तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो बच्चों, हम यकीन करते हैं कि आपको जो भी हम जानकारियां यहाँ से देते हैं, जो भी बातें हम समझाते हैं, उनको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारते होंगे और ज़रूर उसे अपने जीवन में जो है वो अमल में आप लेके आएंगे। हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है बच्चों, बालमंडल, और इस प्रोग्राम में आप का ही सब कुछ होता है। आपके लिए कहानियाँ होती हैं, आपके लिए ज्ञान विज्ञान होता है, आपके लिए कविता पाठ होता है और आपके ही गाने चलते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल मंडल, और कार्यक्रम बाल मंडल में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। और बच्चों, बिल्कुल कार्यक्रम में अब जो है वो समय हो चला है एक कहानी का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बच्चों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भालू को समझ आई मेहनत की कीमत। जी हाँ, मेहनत की कीमत किस तरह से समझ आई भालू को, वो है कहानी। एक जंगल में मोनू नाम का भालू रहता था। उसे शहद बहुत पसंद था। वह दिन भर जंगल में घूमता और शहद ढूंढता रहता। एक दिन उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। छत्ते से शहद की खुशबू आ रही थी। मोनू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, आज तो मजेदार दावत मिलेगी। लेकिन छत्ते के आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ रही थी। एक छोटी मधुमक्खी आकर बोली, भालू भाई, चाहो तो पूरा शहद ले लो, पर हमारा छत्ता मत तोड़ो। हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। लेकिन मोनू बहुत लालची था। उसने मधुमक्खियों की बात नहीं सुनी। वह गुस्से से बोला, मुझे शहद तो चाहिए ही, छत्ता तोड़ने में भी मजा आता है। इतना कहकर उसने पंजे से छत्ते पर जोरदार वार किया। बस फिर क्या था, सारी मधुमक्खियां गुस्से से बाहर निकल आईं। उन्होंने मोनू को चारों तरफ से घेर लिया और डंक मारने शुरू कर दिए। मोनू दर्द से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। वह जंगल के इधर उधर भागने लगा। आखिरकार वह नदी में कूद गया। काफी देर बाद मधुमक्खियां चली गईं। मोनू बहुत दुखी था। उसने सोचा, अगर मैंने छोटी मधुमक्खी की बात मान ली होती तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। उस दिन के बाद मोनू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबकी मेहनत की इज्जत करना सीख ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही मॉरल मिलती है कि दूसरों की मेहनत और बातों का सम्मान करना चाहिए। किसी को अपने आकार से छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। यानी आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे तो आप किसी की मेहनत को और किसी की बातों को छोटा ना समझिएगा, और ना ही उनको आकार से, रूप रंग से, सेहत से छोटा ना मानिएगा। सभी जो हैं उनकी महत्ता है, और सभी की मेहनत जो है उसकी एक कीमत है। बच्चों, ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है तो सामने वाले बच्चे ने नहीं की है, तो ऐसा नहीं है। हम सभी को सम्मान रूप से देखना चाहिए, हम सभी को बराबरी से देखना चाहिए, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल मंडल। कार्यक्रम में बाल मंडल इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, और कार्यक्रम में वक्त हो चला है अब कविता पाठ का। तो बच्चों, आज की कविता है चलो सितारों तक जाएं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना सीखो तुम, मुश्किल राहों से लड़कर जीवन जीना सीखो तुम, सूरज रोज सिखाता हमको अंधियारा हट जाता है, मेहनत करने वाले का ही हर सपना सच हो जाता है, नन्हे हाथों में ताकत है मन में पूरा आसमान, हिम्मत जिसकी साथी बन जाए जीत लेता वो जहान, गिरना कोई हार नहीं गिरकर फिर उठ जाना है, आंसू को भी मुस्कान बनाकर आगे बढ़ते जाना है, नदी सिखाती चलना हमको रुकना उसको आता नहीं, पत्थर चाहे लाख मिले पर वो पीछे हट पाती नहीं, पढ़ना लिखना खूब जरूरी ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके पास किताबें होती उसमें होती सच्ची भक्ति है, चलो सपनों की राह पकड़कर नई उड़ान उड़ाएं हम, मेहनत साहस और लगन से सितारों तक जाएं हम, सितारों तक जाएं हम। तो बच्चों, हम यकीन करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, और बिल्कुल अब देखिए समय, हम समझ रहे हैं कि समय इशारा कर रहा है कि जो हमने आपसे पहेलियां पूछी थी उनके आंसर्स वैसे तो बच्चों ने ढूंढ ही लिए होंगे, लेकिन जिनको आंसर्स नहीं पता चले होंगे उनको हम उत्तर बता देते हैं। तो पहली पहेली थी बच्चों, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतर गया तो दूसरे की बारी, तो दोस्तों वो है तवा और रोटी, यानी तवा काला और रोटी सफेद। अगली जो पहेली है वो थी बच्चों, वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी घटती नहीं, तो बच्चों वो है आपकी एज, आपकी उम्र जो हमेशा बढ़ती रहती है। और अंतिम पहेली है बच्चों, ना छोटा ना बड़ा रोज पहनते सब खड़ा, तो वो है आपका जूता। तो ये थी आज की हमारी पहेलियां, और देखिए अब वक्त जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाने की, तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार।
4: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंडल आकाशवाणी का, यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति बॉर्डर फिल्म से आवाजें सोनू निगम और साथियों की हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो लफ्जों की कहानी से, आवाजें कनिका कपूर और साथियों की हैं।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान। गायक हैं सुजैन डीमेलो और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर दोपहर का 1 बजने को है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सफर, तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार, और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है, तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओं, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज़, तस्वीर, शायद कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियाँ प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहाँ हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

श्रोताओ, साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज़ थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैदल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आज़ादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती हैं, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज़्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज़ भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपये में ख़रीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज़ मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और ख़ासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज़ तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो ज़बरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है। एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफ़र तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफ़र में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी हैं इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है, मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मज़ा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

सुन रहे थे प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे है। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊँट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज़े दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है। श्रोताओं, क्या आपको मौसम प्यारे लगते हैं?

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, और रीटा अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

मान मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: 2024 finalist Alexander Zverev and 7-seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo Demolina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के योकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तेरे दिल में जिस दिन

0: फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया मजरूह सुल्तानपुरी,
1: जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में कल देर शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राज्य के अन्य जिलों की तरह बिलासपुर में भी पंचायत चुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक तौर पर प्रचार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू जिले में पंचायत चुनावों के लिए 84 पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से रवाना कर दी गई हैं। जिले में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 400 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन अधिकारी व कुल्लू के एसडीएम निशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली पर सबसे पहला हक प्रदेश की जनता का है लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर सरकार लोगों का हक छीन रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर को लेकर भी जनता में भय का माहौल बनाया गया है।
1: आप आर्थिक स्थिति की आड़ में हिमाचल प्रदेश के नागरिक का हक उससे नहीं छीन सकते, जनता का हक उससे नहीं छीन सकते। इस सारे मुद्दे को लेकर के मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक आपका वायदा था, वो पूरा नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर आप जनता को धमकाते हो। ये सारे मुद्दों को लेकर के अगर आपने इसी तरह से जारी रखा तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगी।
0: लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: पंचायत चुनाव के चलते सिरमौर जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 60 बसें चुनाव ड्यूटी में रहेंगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद निगम ने इन बसों को चुनाव पार्टियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए तैनात किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है भारत का बदलता मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम। वाचक स्वर पूनम शर्मा।
0: भारत का बदलता माप विज्ञान इकोसिस्टम, निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 ने एक आधुनिक नियामक ढांचे की नींव रखी है जो प्राचीन तौल और माप प्रणाली से विकसित हुआ है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जैसी संस्थाएं राष्ट्रीय मापन मानकों और सत्यापन प्रणालियों का समर्थन करती हैं। ये पहल वैश्विक मापन और गुणवत्ता अवसंरचना के साथ भारत के समन्वय के माध्यम से व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा दे रही हैं। मापन आधुनिक आर्थिक प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन, वैज्ञानिक प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण की नींव है। मानकीकृत मापन व्यापार, स्वास्थ्य अवसंरचना, दूरसंचार, ऊर्जा वितरण और डिजिटल तकनीकों जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करते हैं। प्राचीन तौल और माप प्रणाली से लेकर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के प्रवर्तन तक भारत का मापन इकोसिस्टम निरंतर विकसित हो रहा है। ये विकसित होता ढांचा बदलती व्यापार प्रथाओं, उभरती तकनीकों और बढ़ती उपभोक्ता सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है, आधुनिक समाज में मापन विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। ये दिन इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। ये 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने वैश्विक रूप से एक समान और निरंतर विकसित होती मैट्रिक माप प्रणाली के लिए संस्थागत और वैज्ञानिक आधार सुनिश्चित किया। इस वर्ष की थीम मेट्रोलॉजी नीति निर्धारण में विश्वास का निर्माण, मेट्रोलॉजी की साक्ष्य आधारित और पारदर्शी शासन में भूमिका पर जोर देती है। मेट्रोलॉजी सामान्य लेनदेन और सार्वजनिक सेवाओं में सटीकता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लीगल मेट्रोलॉजी प्रणालियां विभिन्न प्रकार के तौल और माप यंत्रों को नियंत्रित करती है। इनमें पेट्रोल पंप के यंत्र, किराना दुकानों के तराजू, आभूषण की दुकानें, अस्पतालों में उपयोग होने वाले यंत्र, बिजली मीटर, जलापूर्ति प्रणाली और पैकेज्ड वस्तुएं शामिल हैं। ये सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को उनकी खरीद और सेवाओं के लिए सही मात्रा और मूल्य मिले। ये प्रणालियां कम मात्रा देने, गलत बिलिंग और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकने में मदद करती हैं और इस तरह दैनिक वाणिज्यिक लेनदेन में उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। सटीक मापन प्रणालियां सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा में भी योगदान देती हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना के साथ भारत की आधुनिक मेट्रोलॉजी यात्रा आकार लेने लगी। इसके बाद 1956 में स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट पारित किया गया जिसने पूरे देश में एक रूपता स्थापित की। वैश्विक स्तर पर मापन के लिए स्वीकार्य मानक इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ऐसे स्थिर वैज्ञानिक नियंताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है जो कभी नहीं बदलते। इससे सुनिश्चित होता है कि मापन दुनिया भर में सटीक, एक समान और विश्वसनीय रहें। मीटर, किलोग्राम और सेकंड जैसी इकाइयां प्रणाली का हिस्सा हैं। ये प्रणाली विज्ञान, व्यापार, उद्योग और दैनिक जीवन में संगति बनाए रखने में मदद करती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत का नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट बनकर उभरी और मीटर व किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रोटोटाइप की रख रखाव करने वाली संस्था बनी। रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज राज्यों में मानकीकरण और सत्यापन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए स्थापित की गई। ये लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं और वाणिज्यिक व्यापार गतिविधियों में प्रयुक्त मानकों की तुलना और सत्यापन करती हैं। ईंधन वितरण यंत्र, पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने वाली मशीनों का नियमित सत्यापन और कैलिब्रेशन किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को मशीन पर दिखाए गए ठीक ठीक मात्रा के ईंधन ही मिल रहे हैं। जल और बिजली मीटरों को खपत को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि बिलिंग में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
3: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की, जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंद

दुहादोली सीमा हादोली गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम सरिता अनन्या कुश रिंकू टिंकू रीना ऐश्वर्या श्रेय आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद।

त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी, हेतु रांची से प्रवीण कुमार, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: papa, quem é?
1: Tô com papa,
2: e aí?
3: चल चल सुमित उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
4: वहाँ क्यों?
3: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
0: हाँ बिटिया,
3: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
0: लाई चाय बिटिया।
3: चल बैठ सुमित।
4: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
3: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
5: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
4: कहाँ? ओहो जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
3: वो दिन वो
4: कहाँ?
3: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल हैं।
4: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
3: सुमन सुमी वो देख सुमन देखो
4: कहाँ।
3: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
1: सच में
3: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
4: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
3: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
4: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका जैसे
3: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
4: गरम गरम खिला रहे हो।
3: हाँ तो फ्रेंड्स
0: यस
3: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
0: बिल्कुल वेलकम वेलकम।
3: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
0: चंदन?
3: वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
4: रीमा तू नहीं सुनेगी
3: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
6: Three cheers for भावी कवित्री।
3: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
4: अरे यार समोसा खाने दो।
3: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
4: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
3: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
4: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
3: ओके बाय बाय फ्रेंड
0: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी

0: जिंदगी।
1: सुमी बस प्लीज दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूं, बहुत अच्छे लोग हैं। और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन मैं चलता हूं, तू तैयार है ना? हाँ
0: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुमी
2: विजया जी चलिए, भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी देख तेरी बारात आ गई। सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं देना, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराना कैसा, सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है,

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे चलो चलो चलो देखो ना, अरे तार आप ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए, आइए भैया
2: तुम भी चलो
1: नहीं
2: के लिए।
1: मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे तैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी।

0: खुराक है। किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी। वाह, लो लो चाय पियो, लो लो भाभी, तुम भी पीलो, तुम भी पीलो, तुम भी पीलो।
1: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई? हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कुंवारी की जान सी बहू है, आते ही ग्रहण लग गया, अब क्या होगा?
2: अरे बंधी भी थे पागल के साथ।
0: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया? हार, अंगूठी, ये लो, ये लो, ये लो, लूटो, लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो, नाचो, गाओ।
3: भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी, बुआ, पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
0: छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ,
0: मैं पागल नहीं।
3: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
3: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
4: क्या कह रही?
3: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
3: अच्छा।
4: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
3: अच्छा बाबूजी।
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
3: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। नो भाभी, भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
5: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
3: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
5: तो फिर?
3: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारी परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
5: ट्रेजेडी?
3: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
5: वहाँ ठीक रहते हैं?
3: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
5: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
3: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
5: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
3: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबूजी आ गए।

0: वाह डेडी, कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस खराना, शानदार हवेली, चार पांच गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डेडी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देते। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डेडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
1: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी, क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
1: हैं?
2: हाँ, अगर सावधानी ना बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
1: बाबूजी।
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा।
1: नहीं।
2: राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो मुंह में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
4: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
5: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
4: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
5: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
0: सांप और
4: चंदन बेटा
0: छोड़ दो
4: सोया बेटा क्या हो गया मेरी सुनी बेटी
5: आइए डॉक्टर साहब देखिए कितनी तेज बुखार है।
4: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा। चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
4: ठीक है
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
4: ठीक है जा बेटा दवाएं ले आ।
5: थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
4: ठीक है
5: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
4: हाँ हाँ बोलो बेटा क्या बात है।
5: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
4: धोखा? कैसा धोखा?
5: हाँ मम्मी धोखा। वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते
4: हैं।
5: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
4: अच्छा
5: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
4: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
5: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
4: क्या?
5: इस सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। हमें एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
4: अच्छा
5: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
4: ठीक है।
0: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, मैं क्या करूं मैं?
6: अंदर आ सकता हूं?
7: ओ आप आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
6: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
7: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
6: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूं सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
7: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया ये समाज मुझे जीने देगा?
6: समाज फिर वही समाज, क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से। चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन,
6: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
6: सुमी
0: और राजन,
6: ओ सुमी, मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक कंद।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवे

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे
1: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहाँ जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था।
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज़ की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती पाँच बार से रखा था कोने में बैठा हुआ, सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
2: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
2: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
2: हाँ
1: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
0: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे,
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल, और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ किए हैं, जैसे शबाना आज़मी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के

0: नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में हम अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैं भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करें।

0: ये मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊँगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूँगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है, रेसले हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उनका रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह,
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले तो मेरे रसने करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह,
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतज़ार होता है क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा, कब करना चाहोगे, कौन सी है स्क्रिप्ट, सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था। और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर वो उनके राइटर थे उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पर हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए, तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया।
और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शवाना की और वो, तो आप किसी और मिल जाओ, आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की हैं, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली।

0: नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ,
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमल राज की बेटी वो आई, परीक्षित थानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबुली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबुली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा है तो, लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सल स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो दिन बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका क्या वो, तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: अच्छा।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 104,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हुए हैं और सायंकालीन प्रसारण सभा में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लीजिए, सबसे पहले सुनिए आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित वो अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप आनंद उठाएंगे पहाड़ी भजनों का। कार्यक्रम है भजन संध्या। युवा साथी सुनेंगे अपना चहिता कार्यक्रम युव मंच शाम 5:30 पर। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 6:00। शाम 6:30 पर स्थानीय बोली में कार्यक्रम सुनिएगा गल तुसांदी। सफर सुहाने गाने नए पुराने आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:05 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 7:00। स्थानीय बोली में सुनिएगा आपका चहिता कार्यक्रम रेडियो दीतान शाम 7:05 पर। शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:00 से आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। समाचार संध्या का अंक रात्रि 8:45 पर और न्यूज एट 9 सुनेगा रात्रि 9:00, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9:15 से लेकर 10:00 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। लौटेंगे आपके लिए लेकर पहाड़ी गीतों का कार्यक्रम दिलां दे मीत पहाड़ी गीत रात्रि ठीक 10:00। रोमांटिक गीतों पर आधारित आपका चहिता कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा चांदनी रातें रात्रि ठीक 10:30 पर। देर रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित वो अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:07 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पहाड़ी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या।

भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले अहां दे सारे श्रोतियां जो राम राम जी जी। ए रोजारी भागा दौड़ारी जिंदगी ता इंगे चल री रहनी, चला थोड़ी जी बेला कटिए, अहां तुहां भी थोड़ी जी देर बैठिए, हरी सुमिरन करिए। कार्यक्रम दी शुरुआत अहां करनी बाबा जी दी प्यारी जी पेंटा सौगी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी
0: हाँ
3: आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: जी श्रोतियो इस वेला तुहां सुनी कर दे भजन संध्या कार्यक्रम। देखा भई कन्ने कुछ नहीं जानदा दो बोल मिठे मिठे जे सह सौगी जान दे कन्ने प्रभु जी दा नाम राम जी दा नाम सौगी जानदा तुहां जो दसिए।

जी श्रोते तुहां जो दसीए शिव शंभू जी दा प्यारा जिहा भजन आहां सुनिया करनैल सिंह राणा दे स्वर च। कने चला हुण अगला प्यारा जिहा भजन आहां सुनना और गायक कलाकार ए शेर सिंह होरां।

श्रोतियों, भजन संध्या कार्यक्रम चले आ, हुण ए कार्यक्रम दा आखिरी भजन सुना। इस भजन च स्वर तुहां सुनना कश्मीरा कौंडल होरां।

जी श्रोतियो, बिल्कुल इस भजना विच बड़ा ही गूढ़ा संदेश अहां तुहां सुनिया। कने कश्मीरा कौंडल दे गाए दे इसी भजना सौगी अज का भजन संध्या कार्यक्रम भी संपन्न हुआ दे आ। अपनी दोस्त पूजा शर्मा जो इस कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अनुमति। राम राम। अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवमंच।

युवा साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवमंच में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जैसे आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं और साथ में आपका मनोरंजन भी करवाते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जीवन हमें एक बार मिलता है और इस जीवन को अगर हमने अच्छे ढंग से नहीं व्यतीत किया तो भी बाद में हम पछताते हैं। हमें लगता है कि हमने जीना ही बहुत ही बाद में शुरू किया। काश ऐसा होता कि शुरू से ही हम जिंदा दिली के साथ जीवन को जीते तो आनंद कुछ और आता और हमें पछताना भी नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि पछताने की बात क्यों? क्योंकि देखिए, अक्सर हम अपने जीवन में दो राहे पर खड़ा होते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम इस तरफ चलें या उस तरफ, यानी कि हम कौन सा विकल्प चुनें। और यही हालात होता है जब हमने अपने जीवन में करियर चुनना हो। तो जब बात आती है सही करियर चुनने की, तो भाई बहुत ही समझदारी के साथ हमें ये निर्णय लेना होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर का ये हमारा साथ रहेगा। और यूँ कहें कि हमारा जो जीवन है वो हमारे करियर के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, आज नौकरियां और काम करने के तरीके तेज़ी से बदल रहे हैं। मशीनों और डिजिटल तकनीक की वजह से कई काम नए रूप ले रहे हैं और भविष्य में युवा ऐसी नौकरियां भी करेंगे जो आज मौजूद नहीं है। जी हाँ, यानी कि अभी 10 साल पहले की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी अब आ गई है शायद वो पहले नहीं थी, और अगले 10 सालों तक क्या आ जाए मालूम नहीं। इसीलिए कौशल और नौकरी के बारे में सोचना तो चलो काफ़ी नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, ये सबसे ज़रूरी प्रश्न है। जो लोग नई चीज़ें सीखते रहते हैं और नए बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं ना, वे आगे बढ़ने में सफल होते हैं। इसीलिए आज के समय में सीखते रहना और खुले विचार रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, उद्देश्य को दिशा सूचक के रूप में हमें देखना पड़ेगा। यानी जब जीवन या करियर में समझ ही नहीं आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं,

तब आपके अपने मूल्य सही रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, जैसे ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद करना या नई नई चीजें सीखना। जब हमें इन सभी चीजों को करने में मजा आए तो सोच लो कि यही हमारे लिए करियर का विकल्प है। ये मूल्य आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं, चाहे फिर वो ऑप्शन कितने भी हों। आपके मूल्य, आपकी जो वैल्यूज हैं ना, वो बताते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हैं तो मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहता है। इससे मुश्किल समय में भी सही दिशा चुनने में आसानी होती है। दोस्तों, अब देखिए, हमने मूल्यों की बात की तो ज़रूरी है कि जो काम करें तो वो हमें खुद को भी खुशी दे। ये जानने की कोशिश हमें करनी है कि किस काम में सबसे अच्छा महसूस हो रहा है और आपके कौशल कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। ऐसे काम चुनें जिन्हें करके आपको खुशी मिले, उत्साह मिले और आपका आत्मविश्वास बना रहे। अपने जीवन और करियर के अब तक के अनुभवों से आपने जो भी कुछ सीखा है ना, बस वही आपको अगली राह दिखाएंगे, वही आपको सही दिशा तक ले जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह भी आप ज़रूर ले सकते हैं। नई चीज़ें सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने की आदत बनानी है दोस्तों। जी, जो मैं आज हूँ बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं आने वाले कल में इससे भी अच्छा साबित होकर ही रहूँगा। दोस्तों, हालात के साथ खुद को हमें बदलना है। कहते हैं ना कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ वर्ल्ड। जी, लेकिन आज के समय में करियर एक ही रास्ते पर चलने वाली चीज़ तो नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलने वाली यात्रा का भी रूप ले चुका है। इसीलिए सफल होने के लिए व्यक्ति को समय के साथ खुद को बदलना और नई परिस्थितियों के अनुसार ढालना आना चाहिए। इसके लिए अपने भविष्य की सही योजना बनाना, यानी प्लानिंग ठीक ढंग से करना और सोच समझ कर फैसले लेना, नई चीज़ें सीखते रहना और नई चीज़ें सीखने की इच्छा रखना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यही गुण आपको बदलती करियर वाली दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने में मदद करेगी। आपको ये मजबूत बने रहने में भी मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप रोज के कामों को अपनी अंदरूनी इच्छाओं, रुचियों और मूल्यों के अनुसार करते हैं ना, तो आपका काम सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं रह जाता है, बल्कि उसमें आपको अर्थ और खुशी दोनों मिलती हैं। यानी कि काम करने का आपको मीनिंग समझ में आता है और जब वो काम अच्छे ढंग से होता है तो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस तो फील होती ही है। जब आप वही काम करते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो आप लंबे समय तक उसमें टिक पाते हैं। उसमें आप थकान भी कम महसूस कर पाते हैं। आप उस काम से जल्दी ऊब नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। इस तरह आपकी पेशेवर जिंदगी ज्यादा स्थिर बनती है, संतोषजनक बनती है और लंबे समय तक चलने वाली बनती है। साथ में दोस्तों, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होना है। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपने टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस यू। यानी कि देखिए, जो काम इंसान कर सकता है वो आज की डेट में मशीन भी कर सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो देखो रह ही जाती हैं। हम इंसान हैं और हमारे बीच इमोशंस हैं जो मशीनों में नहीं हैं, पर फिर भी उन मशीनों का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा कोई काम ना हो जो हम उस टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे तरीके से कर ही ना पाएं, तो भाई कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो चलिए भाई आगे बढ़िए, सीखते रहिए। सीखने का एक जज्बा दिल के अंदर बना के रखिए, फिर देखिए कौन सा वो काम है जो हमारे युवा नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। तो भाई आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। कहा भी गया है ना, चलो चलें कि चलना ही राह मंजिल है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो चलिए अब हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की तरफ। बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे कि भाई आपको हम मनोरंजन की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारा सा गीत, और इस गीत को हमने लिया है 10 फिल्म से। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: जी युवा दोस्तों, इस समय आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। जी हाँ, और कार्यक्रम है आपका अपना युवमंच। तो गीत से पहले हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे थे दोस्तों कि जीवन में करियर को चुनना एक बहुत ही समझदारी के साथ निर्णय लेने की बात है, क्योंकि ये जीवन भर का निर्णय है, जीवन भर का साथ है। दोस्तों अब करियर की बात तो आती है, लेकिन उससे पहले बात आती है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल की धड़कने जो है ना वो तेज़ होती जा रही हैं। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, तैयारी करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिविज़न करते रहना। दोस्तों देखिए, अगर जो भी कुछ हमने पढ़ा है आज गए दिन तक, अगर हम उसको रिकॉल ही नहीं करेंगे, दोबारा से मुड़ के देखेंगे ही नहीं, तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, सिर्फ पढ़ते रहना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ने के बजाय अपनी तैयारी को और अधिक सक्रिय बनाना ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें, जैसे इससे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, फिर बिना देखे जवाब देने की कोशिश करें। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं दोस्तों, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। तो भाई अपने आप से ही सवाल करें कि अच्छा, ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा या मैंने जो ये टॉपिक पढ़ा, तो इससे किस तरह का सवाल आ सकता है भला, तो भाई उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए, जब हम तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक है कि गलतियां भी करेंगे, तो उन गलतियों को नोटबुक में नोट करें। एक अलग से एक छोटी सी कॉपी लगाएं जिसमें आप अपनी गलतियां लिखते चलें। जब आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं और कोई सवाल गलत हो जाता है, तो उसे उस कॉपी में नोट कर लें। साथ में ये भी लिखें कि इसका सही जवाब क्या था और मैंने क्या लिखा था, यानी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। इसके बाद उस कॉपी को रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बस दोहराना है। इससे आपको अपनी कमज़ोरियाँ साफ समझ में आने लगेंगी दोस्तों, और आप उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे कभी भी। जी मतलब ये गलतियां फिर आपके नजदीक आने वाली कभी भी नहीं है दोस्तों। ये तरीका धीरे धीरे आपकी सटीकता और स्कोर दोनों बढ़ाते चलेगा। अब देखिए ना, ऑडियो रिवीजन की बात करें तो जो टॉपिक्स आपने मुश्किल से याद किए थे, यानी कि जो आपको डिफिकल्ट लगते थे पर आपने याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, उन्हें अपनी आवाज में बोल कर रिकॉर्ड कर लें। हाँ, फिर उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में सेव कर लें, और इसके बाद जब भी आप खाली समय में बैठे हों, या जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हों, या जब आप बहुत ज़रूरी काम नहीं कर रहे हों, तो थोड़ा सा उसको सुन

रहें। इससे बार बार पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय का सही से उपयोग होगा और साथ ही सुनने से याददाश्त भी मजबूत होगी और कठिन जो टॉपिक्स थे आपके वो अब आसानी से आपके दिमाग में एक तरह से एक पक्की जगह बना लेंगे दोस्तों। और जो आपका अंतिम समय का जो नियम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सोने से ठीक पहले नया टॉपिक पढ़ने के बजाय दिन भर पड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, फॉर्मूलाज को और नोट्स को हल्का सा रिवीजन दें। ज़रूरी नहीं है कि रात को आप थक हार के जब सोते हैं पढ़ाई करके तो आप एक नया टॉपिक पढ़ के सोएं। इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि दिन भर में जो आपने पढ़ा है रात को सोने से पहले उनकी एक शांत दिमाग के साथ दोहराई कर लें और दोहराई की गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है दोस्तों और बेहतर तरीके से बैठ जाती है दिमाग में। इससे एग्जाम के समय जल्दी रिकॉल करने में भी मदद मिलती है। लगातार ऐसे करते रहने से पढ़ाई का असर बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बेहतर होता है। तो भाई अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी परीक्षा की तैयारी, तो भाई इन टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं और यकीनन ये आपके काम में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आज हमने साझा की। अब इसी के साथ समय हुआ है आपको एक और गीत सुनवाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो युवा साथियों, इन्हीं गीतों और इन्हीं जानकारियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त पूजा शर्मा को अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे युव मंच कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान ही चला सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न जिलों में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद इन चुनावों को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
2: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और बरसों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा हिमाचल

0: प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारणी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: श्रोताओं, इस समय आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सफर सुहाने गाने, नए पुराने।

दोस्तों अगला गीत हमने लिया है दुल्हे राजा फिल्म से। इसमें स्वर आप सुनेंगे उदित नारायण, रामशंकर व साथियों के।

tonight.

0: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं सफर सुहाने गाने नए पुराने देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर से।
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान

0: मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज के सफर सुहाने गाने नए पुराने यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए स्थानीय बोली में कार्यक्रम गल तुसांदी।

कार्यक्रम गलत संधी सुनने वाले अहदे सारे श्रोतियां जो राम राम जी और बहुत बहुत स्वागत करते तुहांदा अपने कार्यक्रम गलत संधी च। आज का प्रोग्राम तुहां सुनना अपनी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा सौगी। जी श्रोतियो, कार्यक्रम री शुरुआत अहां कुछ पंक्तियां सौगी करना चाहे। जी हां, बड़े ध्यान ने तुहां सुनना क्योंकि इन्हें पंक्तियां पर आधारित आज का अहदा कार्यक्रम गल तुसांदी। जी श्रोतियो, मैं पंछी जो सराया था ता तुहां तिसो पकड़िया कने पिंजरे च बंद करी लिया। मैं बौरा जो सराया, जी हाँ, ता तुहां क्या किता तिस जो तोड़िया कने तिस दी चटनी बनाई थी। जी बिल्कुल भई, जो भी यहाँ जो प्रकृति च अच्छा लगदा, दिला जो भांदा, मना जो भांदा, भई तिसा जो असा फट तोड़ी के मरोड़ी के अपने वास्ते रखी लेंदे और ये यहाँ सोच दे कि भई यहाँ जो अच्छा लग्या था, हाँ दी मना जो अच्छा लग्या था तो हाँ ले लिया है ना। तो इस पर ही यहाँ आज गल बात करनी, यानी कि देखा तुहां दा जीवन, यानी अहां दा जीवन जया से कितना सुंदर है। जीवन सुंदर इसीलिए है क्योंकि अहां तुहां जे से बोली सकदे, अहां तुहां दोयां दे मना दे भाव सोची समझी सकदे, अहां अपने जीवन च सही निर्णय ले सकदे। यानी कि ए सोचने समझने जी दी जो क्षमता है, ए यहां दो अहां जो जानवरां ते अलग कर दी है ना। तभी अगर अहां मानव होई कने अहां इंसान होई कने अगर अहां बीच दया भाव नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो अहां दा जीवन जया से बेकार है। तो इस पर ही आज अहां गल बात करनी। दिखा भई श्रोतियो, दया कने सहानुभूति जैना से अहां दे मानव जीवन दा सबसे सुंदर एक गुण है जो अहां दूजियां वास्ते दसी सकदे। दया अहां दूजियां दी सहायता करी सकदे, उन्हां जो दया दसी सकदे। जालू कोई मदद वास्ते आवाज़ लगांदा तभी यहाँ का दौड़ी कने अपने कम्मा जो चली जाइए, नहीं थोड़ा रुकिए, थोड़ा हाँ भी ठहरिए, संभलिए कने भई उस इंसान दी हाँ मदद करिए। यही तो है इंसानियत दा धर्म। दिखा भई, जब अहां दी सहानुभूति दूजे दे दुखां जो कट कर दी ना, दूजे दे दुखां जो समझने दी अहां दी क्षमता बढ़ाई दिंदी, तो यही सहानुभूति अहां दे जीवन दा एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर गुण बनी जांदा और यही अहां जो प्रेमा सौगी रहने दी प्रेरणा भी दिंदी। दिखा अहां मन दे कि अज के दिन विच अहां तुहां सारे बहुत व्यस्त है, अज भला इक्की दुए दी सुनने वास्ते समय नहीं है। बिल्कुल समय तो बड़ा घट है, अहां सोचदे अपना ये काम भी निपटाई लईए, वो काम भी निपटाई लईए, भई कुछ सो टाइम आ कि अहां दूजियां दी हेल्प करिए, मदद करिए। लेकिन दिखा ये व्यस्तता जीवन दी तां एड़ी रहनी, ये व्यस्तता जीवन च तां कदी खत्म नहीं होनी, उमरा बीती जानी पर अहां दा काम मुकना नहीं। तो भई अक्सर अहां दिखा है कि अहां दे अखे बखे जिया सह बड़े जरूरतमंद लोग होंगे, जिन्हां जो इं बोलीए कि दूजियां दी सहायता दी जरूरत पाउंदे। अगर अहां बिल्कुल तंदुरुस्त है, अहां बिल्कुल ठीक है, तो भई अहां थोड़ा जिहा प्रेम, थोड़ी जी दया, थोड़ी जी सहानुभूति उन्हां वास्ते दसी सकते, उन्हां दी मदद करी सकते। तो देखा भई धीरे धीरे ये चीज़ जे बददी अगर सारियां च, तां तुहां भी देखी सकते, अहां भी देखी सकते कि एक खुशहाल समाज दा निर्माण हुंदा, एक ऐसा खुशहाल समाज जो शांतिपूर्ण तरीके कन्ने एक दूए सौगी रहने दी शिक्षा दिंदा। अहां दे मिठे दो शब्द जे से दूजे जने जो बहुत ही इं बोली सकदे कि शहद जैसे जो अहां दे शब्द है ना, से दूजे दे जीवन च मिठास कोली सकदे। बोलदे ना कि भई दिखा जो घाव है शरीर पर लगिरा से तां परी जा, लेकिन जो जो बाणी ते यानी कि अहां दी जो अहां भाषा बोली उस दे जो भेद बाण है वो इतने गहरे घाव छड़ दे पई सै और ये कितने ठीक नहीं होंदे। तभी ऐसी जी गल अहां नहीं गलानी कुसी जो, आवा दो बोल मिठे जे सारियां वास्ते बोलीए, मिठा मिठा बोलीए क्योंकि चार दिनां दी जिंदगी है और इत्थे यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है ना। तो भई क्यों करी कि ने किसी रा दुख दुखाइए, किसी रा दिल दुखाइए और उन्हें जो और भी दुखी करिए।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਸਾਂਦੀ ਔਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਈ ਮਿੱਠੜਾ ਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਰੇ, ਇਹ ਆਹ ਗਲਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ, ਕਨੇ ਫੇਰੀ ਆਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਗਲਤ ਸਾਂਦੀ।

लो भई दोस्तो, ता अहां भी दो चार गल्ला करते कार्यक्रम गलत सांदी है ना। और दिखा भई प्यारा रे बोल जे इसे बोलने ए यहाँ गलबात की थी। कने इस गीता बिच भी कुछ ऐसा जैसा ही दस्या गया कि प्यारा रे बोल गलाना चाहिंदे और मिली जुली कने प्यार भावना सौगी जे ऐसे असा जो रहना चाहिंदा। ता हाँ गल करा दे थे कि दिखा भई हाँ मानव यहाँ इंसान है ना, ता अहाँ दूजे की हेल्प जे ऐसे सहायता जे ऐसे करी सकते। अच्छा जी, एक इंसान दूजे इंसान की सहायता तो करते ही है और करनी चाहिंदी है ना, ये तो गल हाँ की। हूँ अह दुए पासे चलना, गल करनी जीव जंतुआं दी, पंछियां दी, जानवरां दी। दिखा भई जेठा दा महीना चली रहा है ना, और बिच धुप्पे ऐसे चढ़ा दे कि भई बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। बेचारे पंछी पंखेरू तिना दी चोंचा इं बकोआ दियाँ खुला दी जियाँ जिन्हा जो पानी किते नहीं मिला दा। अब अहां तुहां क्या करी सकते, चला इन्हां दी थोड़ी जी मदद करिए। इन्हें तुप्पियाँ च हाँ इन्हें जो छोइया जी आ पानी रखिए। जी हाँ, अगर तुहां करी सकन तो इन्हें जो थोड़ा जहा दाना पाइए। दिखा भई अब इन्हें दी जुबान तो है नहीं, इन्हें अक पाई कने तो अहाँ ते कुछ मंगना है नहीं। अगर ये अपने भाषा च मंगा दे भी ये तभी दिखा अहाँ तुहां जो तो समय है ही नहीं कि अहाँ इन्हें सहायता करिए। तभी बुजुर्गों की गलायरी गल याद आई, भई पंछी जे ना इन्हें आली कने बल्द नहीं रखी रे, यानी कि बोला इन्हें रे खेतर नहीं होंगे, ये तो भई इं गुजारा कर दे अहाँ दे तुहां दे दाणिया ते अहाँ दे तुहां दे रोटी अरे टुकड़ू ते या फिर खेतर ते कुछ कुछ चुगी लेंदे कने भई अपना पोटू जे ऐसे भरी लेंदे है ना। भई तो चला थोड़ी जी मानवता थोड़ी जी इंसानियत अहाँ भी दसनी। इन्हें तपदियाँ धुप्पियाँ च इन्हें जो थोड़ा जि पानी छोइया जी रखना और इन्हें जो अगर हो सके तो दाना जी ऐसे जरूर जरूर पाना। अब दिखा हाँ दिखा है भई जो पंछी है जानवर है ना, अगर तुहां इन्हें जो कुछ ना कुछ देना शुरू कित्या तो ये तुहां कने घनिष्ठ प्यार रखी लेंदे। उसी समय च देखना तुहां से पंछी दोबारा आंदे कि तुहां ते कुछ चीज़ फिरी मंगदे। एड़ा ही अगर तुहां रोज़ कर दे तो तुहां देख दे कि भई जो एक रिश्ता है ना प्यार दा दोस्ती दा प्रेम दा सदेखिया जांदा उन जो आडल हुंदी तुहां ने। क्यों? क्योंकि तुहां ते ना जो दाना पानी जी रख दे। तभी और कौन जाने कि दाना पानी पी कने जालू ए पंछी उड़ दे ना तो तुहां जो कई लखां दुआं भी दिंदे जी है ना। अब दिखा ए है जो बैर विरोध अहां दे इंसान दे मना बिच भरी रहना सह बैर विरोध इना पंछियां इना जानवरां च नहीं है। तहां थोड़ी जी तिना दी मदद करनी, थोड़ा थोड़ा दाना पानी तिना जो देना जितना हाँ दे सकन, जालू अहां टाइम लगे उतना अहां करी सकन। और दिखा जब आडल हुंदी और तुहां दे बनेरिया पर तुहां दे छत्ता पर या तुहां दी खिड़किया पर या तुहां दे अंगण च चालू पंछी चहचहांदे तो इं लगता कि जियां एक रौनक आई एक खुशहाली आई और इं लगता एक खुशनुमा जिहा टाइम आ कि दिखा अहां कल्ले नहीं है अहां सौगी कोई और भी है। ओ जो कदी कुसी जो बुरा नहीं गलांदे, ओ जो कदी कुसी रा दिल नहीं दुखांदे। जी हाँ, प्यारे प्यारे पंछी पंखेरू है ना। तो चला भई अहां इंसानियत का धर्म निभाइए और इन्हां पंछियां पंखेरुआं दी भी सहायता करिए। तो इन्हें गल्ला बातें सौगी आवा कार्यक्रम रा अगला गीत भी सुनी लीए।

जी भई श्रोतियो, बिल्कुल अजकल तो मन यही करता कि छाइया जिया मंजा टालीए, कने राम करिए, रमा कने बैठिए, कने भी मजा लेइए प्रकृति दा, इस दी खूबसूरती दा। तो पंछी पंछियां कने गल होई, जानवर सौगिया की गल होई, हूँ अहां गल करनी कि छोइया छोइया अहां मंजे ज डालने, कने अहां गपशप मारने ज बैठना, तो भई ये छौं अहां जो कुदा ते आउनी? बिल्कुल, ये छाया अहाँ जो मिलनी पेड़ां ते वृक्षां ते, तो भई ओन अहाँ थोड़ा जिहा हाथ इन्हां वास्ते भी बधाना। बोला है कि हाँ दे जो सबसे सच्चे, सबसे पक्के, सबसे अच्छे मित्र है ना, सह वृक्ष ही है, पेड़ ही है ना, तो भई इन्हां सौगी भी अहाँ अच्छी दोस्ती निभानी। जालू टैमा टैमा पर अहाँ जो जरूरत पाँदी, अहाँ जो कोई चीज़ चाहती, तभी हाँ फट जे ऐसे ही ना पेड़ा ते ले लेंदे, फिर चाहे फल हो, फ्रूट हो, चाहे कुछ हो, है ना। अब दिखा चालू हाँ घर मकान बना दे, तां भी अहाँ जो लकड़ी चाहती, दार चाहता, तो

0: ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਸੌਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੌਗੀ ਦਿਆ ਅਨੁਮਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गलत सांदी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: इस समय आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए स्थानीय बोली में आपका चहीता कार्यक्रम रिडिया दी तान।

0: मेरा बाल का चेड़ू। मामू, गप्पू मामू, देखा मैं क्या बाल का चेड़ू पकड़ी रहा।
1: ओ, चेड़ू पकड़ी रहा। अमनी है? ओ, ये कुत्ती मिल गया?
0: एक ही मिल गया।
1: ओ, बड़ा ख्याल है कि ना माँ का, कि दिया माँ का चेड़ू ये था। ओ, अच्छा ये रखा ना, तू कर ले चल ना। आया ना फिर कर दे इस इलाज। अच्छा
0: ठीक है, मेरा चेड़ू, मेरा बाल का चेड़ू। मामू जल्दी आना।
2: आया आया मैं बेटे, आया बाय।

0: मेरा चेड़ू, मेरा टेंगू, उगलू उगलू, आह दुई खेला पानी बड़ा मजा आना, इसरे बांके फंगड़ू, बड़ी बांकी चुंज, मेरा टेंगू करा, चीं चीं चीं चीं, मेरा टेंगू। मासी क्या?
1: दे दे मिंजू भी दसी दे टिंगू के दे या तेरा टिंगू।
0: नानी मेरा टिंगू। मैंने ना अपना टिंगू कुछ जो भी।
1: मैंने देना कुछ जो भी। बड़ी आई तू टिंगू वाली।
0: मैंने मासी तू तेरे ही कर दी रही। मेरे टिंगू ने हाथ लाना करने। मेरा टिंगू।
1: मेरे टिंगू। दसी दे मिया मिंजू भी दसी दे मैं तो देखने जो बोल दी।
0: मानी मारे दसना अपना टिंगू।
1: मैं नहीं दसना अपना टिंगू।
0: मेरा बबड़ू, मेरा गबड़ू।
1: देना तेरा टिंगू है। दे दे मिंजू इस जो दसी देख दे या टिंगू।
0: मानी।
1: दसी दे मिये।
0: बैड मासी। तूने मेरी मासी। तोरे रहिया हरे दो। कट्टी।
1: तो मैं गलानी भी तेरी मम्मी है ने। तू ले आई तो एक टिंगू है जो। दीदी देखनो बोला क्या लेने आए दिए
2: तेई तू दोई जणी की अल्ला पाईरा हुन किता कम्मा लग रही अंदर कने तू दोई जणी अक्का पर अक्का लग रही काली एक अक्का लग रही काली दूजी अक्का लग रही जोंडी की तो छोटी मुन्नी पर तू भी छोटी मुन्नी बनी है
1: तो मैं देखना क्या लेने आए दिए
2: ओ मेरी जानी ओ अम्मा नो एक छोटा जे चीड़ू पकड़ी ने लिया
1: बड़ी शैल खेला पा दी इसने।

0: मुन्नी तू के गप्पा सुनने बैठी थी, चल बस्ते चाक कने पढ़ाई कर ले उन स्कूलर काम कर, चल चल चल।
1: मम्मी
0: हाँ
1: एक गल दसूं।
0: बोल बोल दस।
1: मम्मी मेरा मन भी करदा कि मैं चिड़ू बनी जाऊं, खुले आसमान चिड़ू कने अंगने आला डाला पर बही जाऊं, कंती जो आग पाऊं। मम्मी मम्मी मैं कुत्ती में नजरिच आई।
0: ओ बच्चा इड़ा दिया कर दी यही। देख हंसने लगी रही, जे तू चिड़ी बनी खेलने चल खेलने। ता एक गल मैं भी दसू तीजो, ताली जो रोटी बनांदी ना रसोई आ, ता एक चिड़ी खिड़की पर आई आंदी है ना, कने से मिंजो बोलदी ना पढ़ने बैठ पढ़ने पढ़ने बैठ पढ़ने पढ़ने बैठ पढ़ने।
1: मम्मी से चिड़ी खिड़की पर बैठा ही ना, से मानने में गलांदी टफी खान टफी टफी खान टफी।
0: मिली टॉफी फेरी
2: तू ताल के जे जे गला दे ना, आ मिंजो ने चिड़ी गलांदी, तू हने नहीं गलांदी चिड़ी, मिंजो ने मी गलांदी चिड़ी।
3: तेरे ने तो कटारी गलांदी होनी।
1: कटारी मासी।
0: पर एक गाल ली कोटो ना बड़ा छाल जचिया तेरा।
1: कटारी मासी तेरी कटारी क्या गलांदी?
2: मेरी कटारी गलांदी परांठा चाल आओ परांठा चाल आओ।
3: ए इंया बोल ना मिंजो भूख लगी हो खाने दी गल। परौंठा ले आओ चाह ले आओ, अप्पू दे बनाई तेरे ने चिड़िया दे।
0: नहीं मैं गपुआ प्यागरी आ रही है, कने इस चिड़ूरी गल रही छेड़ी कर दे चिड़ू चिड़ू भी बेचारा आया टिंगू कने आए ने उड़ी भी गया, कने इह कुड़िया जो ना है चाह पियाए ना है परौंठा खवाया।
3: ओ यह काय खवाना परौंठा कने चाह, इकल्ली है भाई परौंठा कने चाह।
0: अच्छा भी भूख तीजो भी लगी गिरी ता ना।
3: देखा एक कुड़िया कने चिड़िया एक बराबर होदियां, पुराने गीतां च भी है कुड़िया कने चिड़िया होइयां पराइयां, उड़ी जाना पराए देश। है कितना छैल है ना कुड़िया कने चिड़िया। जी हाँ चिड़िया की रक्षा की गल करा दे ना, तीया यहाँ कुड़िया की रक्षा की भी गल करनी चाहिए पता।
0: हाँ ये गल तो बड़ी समझदारी वाली गल आई।
3: हाँ
1: मामू तू तो बड़ा समझदार है। इन्हें लोग तो जो गप्पू गप्पू बोलते रहते।
0: नहीं मैं मुनिये तू सीखे कर खरी गल्ला मामू ते।
1: कटारी मासी। तू भी सीखी ले कर कुछ गप्पू मामू ते।
2: मैं सीखी दा ही है या बच्चा दिखे आहां गप्पू टप्पू।
1: मामू ते जो टप्पू बोला दी।
3: तो टप्पू ही बोलना इन्हें ऐ कौन है?
1: कटारी।
3: ऐ कौन है?
1: कटारी।
3: हाँ फुर कटारी ओ थी ते फुर। ए कटारी ये तुझे पता भी है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
2: और मैं मिंजो पता नहीं है कौन आ?
3: कौन? तोता।
2: मोर।
0: हाँ गपुआ इंगे भी मत समझ ले, मैं एड़ी इतनी भी थोड़ी ना यहाँ री कटारी। कुट्टो तू मिंजो दस ना पी मोरी कहाँ हरा राष्ट्रीय पक्षी कौ का नहीं है?
2: तिजो कौन दे छैल लगदा मोर की कौ?
0: छैल तो मोर ही हुंदा ना।
2: तो बस फिरी
0: हाँ
2: मोर यहाँ दा राष्ट्रीय पक्षी है।
3: देखा अच्छा इतिहास हरे हिमाचल प्रदेश दा कौन है राज्य पक्षी दस?
2: जुजू राणा।
1: चिज्जू खाना।
2: क्या गिलाई करे तू?
1: चिज्जू खाना।
2: चिज्जू खाना नी जुजू राणा।
3: ए जुजू राणा इतना छैल पक्षी हुंदा है ना, बड़े छैल परिस्ते जी करदा दिखदे रहिए दिखदे रहिए सीओ। और एक हुंदा मोनाल, पहले मोनाल था हर राज्य पक्षी पता है केड़ा छैल हुंदा नीले रंग दा ना बड़ा छैल, मनाली जाए ने दिखने उठी है ने ता दिखते रही आना तो हाँ इतना छैल पक्षी है।
2: अच्छा। अच्छा मनाली हुंदा ए
3: हां
0: माता बन्नी पर इना वास्ते हुन पानी रखना कने इना जो दाना भी पाई करना गणा च
2: मैं भी एड़ाई करा करगी मैं भी पा करगी दाना भी कने पानी भी
0: हां ए कीती ते अक्लदारी री

0: अभी आप सुन रहे थे स्थानीय बोली में कार्यक्रम रिडिया दीतान। आज आपने इस कड़ी का पुनः प्रसारण सुना।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हंसराज का गाया हुआ ये लोकगीत।

अभी आपने विनोद कुमार का गाया हुआ ये लोकगीत सुना। अब लीजिए सुनिए संजू व विमला राठौड़ का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, थोड़ी ही देर में यानी शाम के 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी शिमला से।

0: जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आसपास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करें।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा, 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार।

0: कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। पहले चरण में प्रदेश में 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और आज ही वे अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, ऊना जिले की 86, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चंबा जिले के जनजातीय पांगी उपमंडल की 19 पंचायतों में 26 और 28 मई को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने पोलिंग टीमों को चुनाव सामग्री के साथ आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। पांगी उपमंडल में कुल 52 पोलिंग टीमें विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए भेजी गई हैं जबकि 10 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। आवासीय आयुक्त ने मतदान दलों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार नगर पंचायत व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रशासनिक व राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कल 25 मई को शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान हुई मंत्रिमंडल बैठक और चुनाव प्रभावित करने वाले फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। वे आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान मिल रहे जनसमर्थन से ये स्पष्ट है कि पूरे हमीरपुर जिले में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस की नाकामियों और जन विरोधी रवैये के खिलाफ लोगों में भारी रोष है जिसका नतीजा चुनावों में साफ दिखेगा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में एक निजी रेडियो चैनल द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा

0: कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए इसे समाज और नैतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया नशा मुक्ति अभियान में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई है। भाजपा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संकेत देने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा, अनुशासन व अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। हमीरपुर जिले में भी 20 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
1: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और बरसों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारिणी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा। 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त। जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

श्रोताओं आपको पुनः बताना चाहेंगे, रात्रि ठीक 10 बजे आनंद उठाइएगा पहाड़ी गीतों का और पहाड़ी गप्पों का। जी हाँ, कार्यक्रम है दिला दे मीत पहाड़ी गीत। आपका चहीता कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुनेंगे रात्रि 10 बजकर ठीक 30 मिनट पर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: बंजर भूमि करे पुकार, वृक्षों से करो मेरा श्रृंगार। जीवन जीने की अनमोल दवा, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा। जन जन से ये कहना है, वृक्ष इस धरा का अनूठा गहना है। आइए सौगंध खाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, अब से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: बैजू बाबरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आज के कलाकार थे सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। अब आज का साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी।
1: हे भगवान, ऐसा भुलक्कड़ और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा जो जनाब जल्दी घर आ जाए।
2: सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
1: चूल्हे में।
2: चूल्हे में? अरे वहां क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
1: मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या?
2: पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं।
1: तुम्हें कुछ याद भी रहता है? सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है। बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में।
2: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूँ, ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
1: अगर कसर रह गई है तो वापस चले जाओ।
2: तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
1: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
2: तारीख भाई 24 अप्रैल।
1: हाँ, 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
2: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं। भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: बस बस रहने दो।
2: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
1: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह के ही आदमी रहा है उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है।
2: अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूं, इक्कम एक दुक्कम दो तिक्कम तीन।
1: अरे अरे क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
2: तो बोलो माफ किया।
1: अच्छा बाबा माफ किया।
2: हाँ ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है।
2: अरे पर तुम वहां मुड्ढी पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
1: नहीं नहीं मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ?
2: क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
1: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
2: हैं? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी?
1: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
2: देखो सुमा तुम ये किन दकियानूसी बातों को लेकर बैठी हो, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं, अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
1: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
2: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्डी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
1: अगर तुम मुड्डी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
2: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया
1: तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ गया
1: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
2: क्यों
1: नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
2: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ देखो अभी बजे हैं 7:30, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
1: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ।
2: सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो।
1: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए।
2: हाँ भाई ये भी अच्छा आइडिया है, तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
1: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
2: हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
1: तो ठीक है, तय रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और आधा किलो बादाम रोल ले आओ। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
2: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
1: मुझे पता है।
2: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
2: यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो।
1: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्तेदार फूटी आंख नहीं सुहाते।
2: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों की बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
1: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो।
2: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है ठीक है, अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो। और कान खोल कर सुन लो, अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी हुई बातों को भूल जाऊंगी।
2: हाँ ठीक है, लाओ थैला और पैसे दो।
1: ये लो थैला। हाँ, पैसे मेरे पास है नहीं।
2: क्यों क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
1: हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे।
2: क्या, तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूं कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी आईएएस की नहीं?
1: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली।
2: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?
1: देखो झूठ मत बोलो, तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे।
2: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी कर ली।
1: क्या कहा, मैं भैंस?
2: हाँ हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस।
1: अब खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी।
2: अरे जा जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली, भीमसेन की औलाद।
1: क्या कहा, भीमसेन की औलाद?
2: हाँ हाँ, भीमसेन की औलाद।
1: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कहो है मेरा झाड़ू? अरे कहा है? हाँ ये रहा।
2: अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे तो अरे भागो,
1: अरे भागो। जाओगे कहाँ? जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
3: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, कहाँ जा रही हो?
1: जहन्नुम में।
3: क्यों, तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
3: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं।
3: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
1: क्या, मेरे लिए गिफ्ट?
3: हाँ, ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था, और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
1: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
3: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग, और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
1: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी?
3: क्या आज के दिन झगड़ा, ऐसा क्या हो गया?
1: अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था, और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी, और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
3: क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्योहार है ना।
1: मैं भी कितनी पागल हूं जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं।
3: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है?
1: हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं?
2: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
1: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
2: हाँ। अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
1: तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
2: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं, और अब जल्दी चलो।
1: अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना।
3: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
1: थैंक यू।

तो ये थी झलकी मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत फिजा फिल्म के गाने से, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, गुलजार के बोल, अन्नू मलिक का संगीत।

कल हो ना हो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

यमला पगला दीवाना टू, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम, शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लाड़ का संगीत।

ओम शांति ओम। फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। ये सिंगम फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अजय अतुल का संगीत है।

0: सिंघम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,

0: दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विथ द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: रे बाप मामा गागा।

16वां साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और
2: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिलांदे मीत पहाड़ी गीत।

दिखा भाई दोस्तों आहां अपने विचार सांझा कर दे अपनी बोलियां ने कने भाई अपनी मातृभाषा जो है जो हां दी पहाड़ी बोली है इस बीच जो भाव निकल दी ना वो मजा तक किसी और भाषा च बोलने च नहीं आंदा। अब दिखा छोटी मोटी छेड़ छाड़ा रे गीत भी यहाँ लोक गीत हिमाचली लोक सुन दे और बड़ा ही मजा आंदा जल वहां इन लोक गीतना जो सुन दे चाहे मुंडू दा ब्याह होवे चाहे कुड़िया दा ब्याह होवे है ना। तो ये जो छेड़छाड़ वाले गीत है और पहाड़ी बोलिए च तो देखा भाई इन्हें जो बोलते गालियां गाणी और इन गालियां गाने च भी ना एक अपनापन है। तो चला एक लोक गीत तुहा वास्ते हां ढूंढी के निलंदी रा टोली के निलंदी रा पार लिया क्वालिया कैंथा दिया डालिया पिंगा पिंगा चार। अब भी कैंथा दिया डालिया जी पिंगा पाई लेनी तभी मुश्किल तो होनी तभी इस तरह दे कुछ एक लोक गीत जे सभी अहां दे ब्याह कार्यां च हिस्सा बन दे और अहां दे कार्यां च चार चांद लगा दे रौनक बढ़ाई दें दे। तो चला एक लोक गीत पहले सुनी लीए कने अगली गलबात उसके बाद करिए।

चल बी श्रोत्यो दा पारलिया क्वालिया कने कैंथा दी डालियरी कहानी भी सुनी ली कने हुण गल करनी हा रिश्तियां दी। देखा भई यहां दे रिश्ते बड़े बहुमूल्य हुंदे अनमोल हुंदे। जे गल करिए देवरा कने पावे दे रिश्ते दी ना तबे ये बड़ा ही प्यारा जिया रिश्ता हुंदा। अब देखा अगले लोक गीता च देवर क्या गलाई करदा पावे जो चला आपू ही सुनी लिया।

दिखा भी श्रोतियो गल चली रही हो अपने हिमाचला दी कने मेलियां दी गल हो ही ना ता एक क्या गल बनदी बिल्कुल नहीं बनदी आहां दी आन बान शान आहां दे हिमाचल दे प्यारे प्यारे मेले फिर मेले चाहे शिवरात्रि दा हो अपना सुजानपुर दा हो रेणुका दा हो मेला मिंजरा दा हो या लवी दा मेला मारकंडे दा हो या पणजी दा ता चला भी मेलियां दी नंद लुटी लईए इस प्यारे जे लोक गीता दे जरिए।

लो अभी दोस्तों, पता ही नहीं चलिया मीठे मीठे लोक गीतां जो सुनी सुनी कने छेड़ छेड़ मीठी मीठी गल्लां बातां करदियां करदियां कल लीजिए अस है कार्यक्रम दा समय भी पूरा होने लग्या। ते एक वादा कि फिर इसी दिन इसी टाइम इसी कार्यक्रम च छेड़ छेड़ लोक गीत लई कनेहा हाजिर होना कने करनी हां ढेर सारी मीठी मीठी गल्लां बात। तभे दिया हुण अपनी दोस्त पूजा शर्मा जो अनुमति। राम राम जी।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिलांदी मीत पहाड़ी गीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आपका चहीता कार्यक्रम चांदनी रातें। कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त पूजा शर्मा। करिए कबूल प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जी दोस्तों, ये दिलों की बातें हैं, दिल ही जानता है। कभी कभी तो आंखें भी दिल का हाल बयां कर ही देती है। कभी यूं लगता है कि लोगों के बीच में रहकर भी तन्हाई महसूस होती है, तो कभी तन्हाई में भी महफिल हो जाती है और महफिल में कभी तन्हाई लगने लगती है।

क्या कहें कि किसी के आ जाने से ये ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। यूं लगता है कि कुछ खाली खाली था जो अब मुकम्मल हुआ।

कार्यक्रम है चांदनी रातें और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर से FM बैंड 101.8 MHz पर।

लीजिए दोस्तों, मोहब्बत की राहों पर चलते चलते पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है और ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो दोस्तों, इन्हीं गीतों के साथ आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए नगमे मोहब्बत के। दीजिए अनुमति अपनी दोस्त पूजा शर्मा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रथा 5:58 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।